होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्सियों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

वैसाई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव संख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई।

आद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान।

0: Mamster Golgappe and the Golgappian da Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203 048 4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
3: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
4: Al Noor, purana ba'itmaad naam. Nayi range ke saath. Premium pulses. Pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak. Aapke Asian grocery stores par available hai. Al नूर, taste the difference.
5: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है. मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है. माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं. माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
6: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स. स्विट्जरलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है. स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
7: वेक अप, फील गुड. It's Donny Brasco on Breakfast.
8: Leica Radio.
9: Diamond Track of the Hour. Sponsored by Malabar Gold and Diamonds. It's the season of jewelry and offers. Get free gold coins with diamond and precious gem jewelry.

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: बात क्या है बंटू?
2: अरे बोलो काक भसुंडी।
3: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
4: अरे वहीं क्या हुआ?
5: कैसे कैसे बेहोश हो गया?
0: और लाइफ बन गई हेवन।
6: भाभी डायन है।
3: But wait, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
7: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
0: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
7: आप सिर्फ मजे लो।
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
9: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर travel mantra.

0: 07300998923। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823। Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
1: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
2: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk, or give us a call on 02030484848। On behalf of Sandhya Wholesale, Happy Diwali।
3: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
4: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app. Next, Kush on the Mid-Morning Show.
5: On Leica Radio.
4: London. From West London to East London and the surrounding areas. We are Leica Radio.

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Light up your Diwali. Buy one, get one free on all fireworks with a huge selection to choose from. Shop diyas, candles, mustard oil and all your Diwali decorations. So many offers, you'll have to come and see for yourself. Sira Cash and Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes.
2: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
3: Tune in to Navratri Hours on Lyca Gold at 9 a.m. and Lyca Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
4: Add crunch to your celebrations with Haldirams.
5: Aloo Bhujia, Punjabi Tadka, Bombay Mix, Khatta Meetha, Nimbu Masala and more. Made for sharing.
4: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
6: Haldirams.
4: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ की घंटी का नाद सुनाए, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
7: Navratri special on Lyca, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
8: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ਸੌ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
4: चाय लवर्स आपका फ्लेवर कौन सा मसाला का तड़का ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान सीटीसी की कड़क किक ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज चा फॉर यू पांच चाय हर मूड के लिए आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com
5: Plan your exotic dream holiday to Maldives, Mauritius, Bali, Zanzibar and many other destinations only on travelhubworld.com.
6: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 or 0208-782-8833.
7: Travel Hub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit travelhubworld.com.
1: Big celebrations, sweet moments and Diwali offers you'll want to see for yourself. Discover fresh mithai and all your grocery essentials at Sira Cash & Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes. Sira Cash
8: & Carry. When you decide to invest with Barclays award-winning investment platform with no monthly fee, you've made a good move. It can make you do a victory dance. In a lift. At work. Oh, sorry. Barclays Direct Investing now with no monthly fee. Good move. Barclays, backing your future. Other charges such as trading fees apply related to your account activity. Full details on barclays.co.uk/directinvestingfees.
9: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है माँ की घंटी का नाद सुनाएं मन के सारे डर मिट जाएं माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी हर घर में सुख शांति छा जाए लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी
10: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स स्विट्जरलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है स्टार टूर्स ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
11: लाइका बैक टू बैक हिट्स फॉर द कैपिटल

0: Ashreya Ghoshal, Arijit Singh, Rocky aur Rani ki Prem Kahani playing on your mid-morning show.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai.
4: Like our radio.
1: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in store on 215 The Broadway, Southall.
0: Gold currently trading at £101.6 per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Gold Bank London. Hassle-free and reliable way to buy and sell gold coins and bars. Gold Bank London, 215 The Broadway, Southall. Or buy online at gold-bank.co.uk.
4: Leica
3: Radio.
5: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
6: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with SKLP CUK, Sri Kutch Leva Patel Community UK on Thursday, 15th October at India Gardens, West End Road, North Holt, UB56RE. Join us for a wonderful celebration of music, dance and community.
5: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing families together, one meal at a time. Loved by generations since 1970.
7: Pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
8: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
9: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
8: रात 8 बजे से टिल लेट डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल
9: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फात्सोमा
8: कॉल प्रथम पटेल 07838302450
10: Sunshine, skyscrapers and souks.
11: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
10: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
11: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
10: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
11: Southall Travel. At all protected.
12: 073-00-99-8823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेशन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
13: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी
14: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल
13: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में
14: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल
13: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947
14: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116
13: दिवाली का जश्न अपनों के संग
15: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sandia.co.uk or give us a call on 02030484848. On behalf of Sandia Wholesale, happy Diwali.
16: Al Noor, Purana Baitamat Nam. Nayi range ke saath, premium pulses. Pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak. Aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor. taste the difference.
3: Passports, tickets, kids' tablets.
17: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
3: And checking in with grandma.
17: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
3: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
17: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
3: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
17: Holiday sorted.
18: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
19: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
20: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with SKLP CUK, Sri Kutch Leva Patel Community UK on Thursday 15th October at India Gardens West End Road, Northolt, UB56RE. Join us for a wonderful celebration of music, dance and community.
21: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing families together one meal at a time. Loved by generations since 1970.
22: This is Tony Brasco from The Breakfast Show here at Leica Radio. Remember, listen to me live from 6 o'clock in London, and then from 7 o'clock we go live over in Manchester as well.

0: सबसे निराला मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
3: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
4: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5 billion litres. And in Wales, wetter winters and drier summers are putting pressure on the water supply. Most of us think we use around 30 litres a day, but the reality is closer to 140 litres. We can all help to save water by making simple changes. Take shorter showers. Fix leaking taps or toilets using a washing up bowl instead of running tap, and switch to eco mode on your dishwasher or washing machine. Water is precious. To protect it, we all need to use less. Search Let's Save Water or visit letssavewater.com for easy ways to save water every day.
3: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है. मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है. माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं. माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
5: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
6: A Laika radio classic. Plays now.

0: ते गोल गप्पियां दा पानी।
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
3: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me.
4: Yeah? Okay. Okay, yeah, love you too.
5: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October, only on Jio Hotstar.
1: Light up your Diwali. Buy one, get one free on all fireworks with a huge selection to choose from. Shop diyas, candles, mustard oil and all your Diwali decorations. So many offers, you'll have to come and see for yourself. Sira Cash and Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes.
6: Tune in to Navratri Hours on Lyca Gold at 9 a.m. and Lyca Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
7: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
6: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। स्विट्जरलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
8: विश्वनागा ऑन लाइका रेडियो।

0: 123.
1: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
2: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
1: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
2: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
1: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
3: Carotino Better Ghee. The healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee. Available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
4: Al Noor, Purana Baitamat Nam, Nayi Range Ke Saath, Premium Pulses, Pure, Fresh, Full of Natural Goodness, Everyday Dal Se Lekar Wholesome Meals Tak, Aapke Asian Grocery Stores Par Available Hai. Al Noor, Taste the Difference.
5: England mein hum paani ka istemal utni tezi se kar rahe hain, jitni tezi se prakriti ise dubara bhar nahi sati. Agar kuch nahi badla, to 2055 tak hume har din 5 billion liter se bhi adhik paani ki kami ka सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं शावर लेने में कम समय लगाएं लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए पानी अनमोल है इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Bring home the rich taste of Cow's Choice 100% pure ghee. Made from fresh cow's milk cream, slow cooked for a rich aroma and granular texture. No preservatives, perfect for everyday cooking and delicious sweets. Cow's Choice, swad aur shuddhata ka bharosa. Call 07344-520-666. Cow's Choice pure ghee, har chamach mein,
2: shuddh desi swad. 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
3: Witness the beauty of Jordan, Oman, Dubai, Istanbul, Doha and Abu Dhabi with TravelHubWorld.com.
4: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
5: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज. चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए. आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक. खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.
6: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
7: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay, yeah, love you too.
8: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October, only on Jio Hotstar.
9: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
10: Craving the taste of home this festive season?
11: Enjoy curries, chole bhature, vada pav, raj kachori, mithai, special desserts and more at Haldiram's first London restaurant.
10: Visit Haldiram's in Leicester Square, London today.
11: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है. मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है. माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं. माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
12: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
13: A Laika Radio.

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Big celebrations, sweet moments, and Diwali offers you'll want to see for yourself. Discover fresh mithai and all your grocery essentials at Sira Cash & Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes. Sira Cash &
2: Carry. Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
3: Al Noor, purana ba'itmaad naam. Nayi range ke saath. Premium pulses. Pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak. Aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor. Taste the difference.
4: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah?
5: Okay. Yeah. Love you too.
6: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October. Only on Jio Hotstar.
7: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
8: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
9: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
8: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। स्विट्जरलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
6: Diamond Track of the Hour, sponsored by Malabar Gold and Diamonds. It's the season of jewelry and offers. Get free gold coins with diamond and precious gem jewelry.

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London. This Diwali, celebrate with Shayona.
1: Enjoy Mathia and Chora Fali. Mix and match any three for just £4.50.
0: Discover our delicious range of fresh UK-made mithai, available at Shayona stores.
1: Visit our new Honeypot Lane store for all your snacking needs, including fresh hot food. Find selected Shayona lines at Morrison's, Tesco and Sainsbury's throughout the Diwali season.
0: Shop in-store or online at shayonauk.com. Shayona, swaad jit tehwar ne banave khaas.
2: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
3: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
4: Share festive sweetness with Haldiram's.
5: Kaju Katli, coconut burfi, gulab jamun, Mysore pak, milk cake, rasgulla and more. A taste of home.
4: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
6: Haldiram's.
7: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर
0: Leica Radio Network.

0: Falcon. Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: कभी सोचा है 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो.
0: Catch Dil Chahta Hai on its 25th anniversary at 2 PM this Sunday at your nearest Showcase Cinema.
2: शादी करने के लिए किसी से प्यार करना बहुत जरूरी. तुम्हें क्या लगता है?
0: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFF UK.

0: Maiko Radio.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
2: Two businesses.
3: Same town.
2: Same service.
3: One appears on page one of Google.
2: The other doesn't.
3: Guess which one gets the customer?
2: The truth is brutal.
3: The first page of Google gets the business.
2: Everyone else gets what's left.
3: So here's the real question.
2: When your customers search for what you sell, do they find you?
3: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
2: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
4: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी.
9: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
8: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में.
9: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट. पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल.
8: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756147.
9: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208907016.
8: दिवाली का जश्न अपनों के संग. आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है. मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है. माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं. माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
10: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
11: Laika Radio.
12: Pay close attention and name the film of this cracker classic.